0: दुर्गा ज्वेलरी उद्योग, खाँदबारी एक बुद्ध टोल, सङ्खुवा सभा।
1: प्रोप्राइटर गोपाल विश्वकर्मा, 98429781, जनक पौडेली, 98525854 र 029560248।
0: दुर्गा ज्वेलरी उद्योग, खाँदबारी एक बुद्ध टोल, सङ्खुवा सभा।
2: You're listening to the greatest beats, hits, news, views on 95.5 Radio Sankawasava.